तुमरे महिमा बर ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरे महिमा बर ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन महसह है।

मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए निकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत।